0: खर्चे को संग तो
1: जी राही ना तो ये ने तंगी ने शेप तो दो खर्चे हो रहे ने ने जो दिके शिया चेतो जो संग खर्चे दामे हाँ कुछ ही बे
0: रंग चाहिए खरी यू
1: जी जी तो ये चुकर में तो वे रंग तो ये 넘겨도 가리에 소래. 아 明年也别说自己。到我那年终了，明年是谁都给啊？